0: ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ହୁଏ ସେ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୁଏ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे

0: अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करे प्रसार करलो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र रो आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗର୍ତ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରୁ।

0: सङ्गच्छध्वं सम्बद्धध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कथारे अछि एकता ही बड़, प्रकृतरे एकता ही सत्य अटे। प्रकृतरे निजे कौनसी काम करिबाकु संकल्प कले इच्छा शक्ति बलरे सफलता मिलिथाए। गोटिए छोट बाल्टीरे पानी थिले मध्ये गोटिए आंगुठीरे टेकी हुए नाही, मात्र चारोटी आंगुठी को जोड़ीदेले पानी भर्ती थिबा बड़ बाल्टी मध्ये टेकी होई जाए। खंडिए लंबा काठीर किछि अंश भांगिदे आमे दांत काठी रूपे व्यवहार करिथाउ, मात्र सेमिति अनेक खंड काठी जदि गोटिए बिड़ारे बंधा होइथिबो से बिड़ा को भांगिबा कष्ट होई जाए। एथिरु जणा पड़े एकता ही संगठन, एकता ही शक्ति अटे। आमे पुराणा कालरे गोटे कहानी सुनिछु, जणे मरणासन्न व्यक्ति तांकर पुओ मानंकु डाकी खंडिए खंडिए काठी भांगिबाकु कहिथिले एवं तांको पुओ माने सहजरे काठीगुड़ी को भांगी पारिथिले, किंतु जेतेबेले से काठीगुड़ी को बिड़ा करिथिले एवं बिड़ाटी को भांगिबाकु कहिथिले सेतेबेले सेमाने बिड़ाटी को भांगिबारे असमर्थ होइथिले एवं सेही व्यक्ति जणक मृत्यु पूर्वरु पिलामानंकु एकता ही बड़ एही कथा सिखाइबाकु चाहुथिले। एकता हेउछि मिलेमिसी रहिबा, परस्पर को सहयोग करिबा, लक्ष्य पाई एकाठी काम करिबा। शक्ति हेला सफलता हासिल करिबार क्षमता, तेणु एकता ही शक्ति। एहार अर्थ हेउछि आमे एकाठी काम कले आमर शक्ति बहुगुणित होइथाए। आम देश भारतवर्ष बहु भाषा बहु धर्म संस्कृति एवं परंपरार देश, एकता ही आम देशर सबुठारु बड़ शक्ति। स्वाधीनता संग्रामरे मध्य एकता भारत को स्वाधीनता देइथिला। नीतिदिनिया जीवनरे मध्य एकतार गुरुत्व अधिक, परिवाररे एकता रहिथिले सुख शांति बढ़े, अनेक समस्यार समाधान होइजाए। जणे लोक जदि गोटे ओजन बोही पारुनाही तांको संगे आउ चारि जण मिसिगले ताको सहजरे बोही नै पारिबे। संगठन ही हेउछि बड़, एकता जेते मजबूत हुए संगठन ओ तार बड़ सेते मजबूत हुए। इंग्राजी रे गोटे कथा कुहा जायछि युनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल। एही संगठनर दुईटी दिग अछि, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक दिगटी हेला एकता द्वारा समाज को श्रृंखलित करी जीवन धारणर मान वृद्धि करिबा। नकारात्मक दिगटी हेला जदि समाज रे मनीषर जीवन धारणर प्रक्रिया विरुद्ध रे जदि शक्ति काम करे तेबे सेपरि आसुरिक शक्ति को सेही सांगठनिक एकता द्वारा विनाश करिबा। क्षुद्र कीट उई अल्प अल्प करी रचई वाल्मीक घर, मुहि सेहीपरि गढ़ीबी जतने संगठन निरंतर। तेणु आमे जाति धर्म भाषा किंबा आंचलिक भेदभाव भूली परस्पर को सम्मान करिबा, सहयोग करिबा, एकतार बार्ता प्रचार करिबा। एकता हेउछि शांति प्रगति एवं समृद्धिर मूल मंत्र।
1: सुनिले आजिर भावना उपस्थापना शिवानी लाल, आकाशवाणी संबलपुर। वर्तमान शुणतु अति बड़ी जगन्नाथ दासकृत श्रीमद भागवतर 428 तम भागवत।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम

0: गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत

0: विचलित होंगे।
1: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
1: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR

0: वो बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू इरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया एंड सेफ गार्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाईची to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ram Ji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ram Ji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging from between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%.

0: हेलो हेलो
1: आया नमस्कार
0: आया नमस्कार आया
1: आया मुझे बोलो नहीं मेरे को तो लिए गांव पर बोर्डो जिला बरगढ़ रो
0: बस बस यहाँ जिन्हें उपिना यहाँ कहूँ तो ले मुरली वाले फोन

0: हेलो।
1: जय सीताराम आज्ञा। जय सीताराम
0: जय सीताराम आज्ञा। मेहराव केन्दा अच्छन
1: आज्ञा। भल अच्छे आज्ञा। रवींद्रनाथ मेहर
0: आज्ञा आज्ञा
1: भला कटा भेड़न ब्लॉक बरगढ़ जिला नु कहू आज्ञा।
0: आज्ञा आपण को नाम नु परिचयटा होचे जय सीताराम आज्ञा।
1: आज्ञा आज्ञा
0: आ केन्दा अच्छन आज्ञा। दीपा केन्दा अच्छे
1: भल अच्छे आज्ञा। 3 बजे रु बरसा लागी छे जे एकी बेल तक नै माने नै छड़वार के बरसु जी।
0: आज्ञा बहुत बढ़िया है सियाड़े माने इटा भेड़न ब्लॉक न खाली वर्षा होचे बगे लागुचे बरगढ़ जिला।
1: आज्ञा जा होती जे गरम आपत्ति मिलला आज्ञा।
0: हां आज्ञा जे फिर कल के फिर गुलगुलावा आज्ञा महाप्रु तो अणसर घर के
1: बिना। हां आज्ञा इटा तो महाप्रु बनाले इटा हमर से अणसर घर रहबे हमर जे समलपुरी भाषा रे महाप्रु मोहमाड़ी हेगिरि पड़सन झाल नासन बोली करी कहसन।
0: आज्ञा आज्ञा
1: इटा तो रेत गुलगुली हवा आज्ञा।
0: हवा आज्ञा बाकी जहाँ भी हो पैन टिके पड़ी गला जे चासर काम तोती हे परबा हटा गुटे बड़ को।
1: हां हां आज्ञा पोला पुली माने पड़ी परबा। आ गुटे कथा आज्ञा जाओ सब वर्ष पूरी रथ यात्रा के जाती ई वर्ष भी टिके दी सालानो डेढ़ मास सालानो।
0: आज्ञा
1: आज्ञा ओइले पर रथ यात्रा के बरसा हो दिवा बाजे लागु जे आज्ञा जाति हो जाई के दर्शन ते करमा।
0: आज्ञा आज्ञा भगवान आज्ञा जाई पारुछन बड़ कथा है माने
1: सब। हां आज्ञा हाथ गोड़ तेलु दिवार तब जाऊ थाऊ बोली करी टिके मानसिक अछे हमर नुआ कोले बररु जाऊ छौ नुआ कोले बर तब पहुंची पारता का बोली करी
0: आया निश्चय हवा मुड़ई जन जिनिस जिनिस टे मुड़ई छन जते बेले निहाति हवा महापुरुष सेति लागे सांगे रहबे आपण को। आ आज केन गीत सुनमा कोन?
1: हां आज्ञा आज सुनमा तो कोई फिल्म रो गीत टे सुनमा।
0: आज्ञा केनडा कोन?
1: इदा ए माउसी आलो माउसी तो माता जी तो माता जी तोर बाबा जी काहे लो जी गीतटा सुनमा आया।
0: हां आज्ञा ठीक अछे।
1: आनंद मेहर चैतन्य पटेल देवराज मेहर चिचिंदा सुबल साहू नारायण मेहर जय गोपाल बेहरा साहू सुराम साहू पुष्पांजलि कुमारी प्रशांत कुमारी लिंगराज मेहर सत्यभामा मेहर आमर रोहिणी मेहर नागू पात्र रश्मि रंजन मेंडली लक्ष्मीनारायण बाग चित्रसेन सब स्वर्ण प्रभा कर उपेन्द्र सुना पंचानंद पंचविहार सेवाराम मेहर मुरली मेहर देवराज मेहर जसवंत पाई मुरली प्रसाद कर और हरेश परुआ आपण मुई मोर नाती नाती माने सबे सुनमा आज्ञा।
0: आज्ञा आज्ञा समस्त को मिसे करे सुनमा जा भी हो एतकी लोक ना सोर करी पारे छन बड़ कथा आज्ञा।
1: हो आज्ञा हमें सब बेले फोन रे एटा कथा बार्ता चली जे किने हमर ई रेडियो क्लब परिवार रो।
0: आज्ञा हेटा हे जिनिस ता आज्ञा गुटे संपर्कटा होउछे माने सेटा बड़ कथा है जे समस्त मिसी करी अछन सेटा बड़ कथा है। आज्ञा
1: आज्ञा खाली ई रेडियो लागी।

0: हेलो अनुरोध आपण मानक मन पसंद कथाचित्र गीतर कार्यक्रम हेलो अनुरोध
1: आकाशवाणी संबलपुर हिंदी संवाद शुणु रिले कर प्रसार आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
3: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं।

कार्यक्रम सेसगीत सोनून कंठदान कर सोनू निगम नितिन रायकर और साधना सरगम गीत लिखे हितिन रायकर।

इनु सिलसिला गुट्टे हिंदी सिनेमा गीत और कार्यक्रम आज का है मस्त सिनेमार गीत मान के सुनले गीत लिखी दिले हितिन रायकर संगीत दे संदीप चोटा आकाशवाणी समलपुर स्टूडियो घड़ी थी समिया दिन और 11 बजे जाऊ।

0: হিন্দিতে সংবাদ শুনুন, রিলে করেছে আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगे। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर को लाभ होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई है। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वेडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी?
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
3: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
3: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
3: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
3: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने

0: को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में

0: चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
2: जी मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है।

0: बच्चों बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये

0: सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
0: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो।
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
0: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
0: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा, चलता हूं, बड़ी देर हो गई।
0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूं।
1: ए, कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, चलो
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
5: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है?

0: देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
1: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
0: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
1: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो? अरे ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग
3: सुनिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी संबलपुर स्टूडियो घड़ी वर्तमान समय दिन गोटाए बजाक जा हिंदी रे संवाद शुणु रिले करुछ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी

0: डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଇଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୀତ ରଚନା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ଜି ନାରାୟଣ ରାଓ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟି, ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର, ଗୀତିକାର ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।

0: committed today to honor doctors for their dedication, compassion, and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July to commemorate the birth and death anniversary of one of India's most respected physicians, Dr. Bidhan Chandra Roy. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for the exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
1: On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Quiles scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat G. Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक

0: समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें

0: सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement.
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है।

0: में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठरु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक मुख्य संवाद विकसित भारत

0: तो पूर्व युग तो नाम है समाज इदान सुरक्षित काम आगे लगान बहुत चेष्टा काम की पूजा कामते कामते अंदर की कुनाउंटा जिनिस तेंग अंचन जेंदा बाड़ा मानू अंचा पीपल मानू अंचा नाम सूर्यवन ताने प्रत्यक्ष देवता बनार सूर्य देवता बन प्रत्यक्ष देवता बन प्रत्यक्ष देवता तार पछि इना कलियुग इदा कलियुग दु तार पछि द्वितीय नु ताने बजरंग वाली बनार इना डेट नु भी इर केभे तमे मरण मानला बन सूर्य देवता आउ बजरंग वाली ई नाम सूर्य देवता बन बेला बेला वाला
1: पूर्व
0: धर्म बेला वाला पूर्व युगस्थित नेम ताने पोखरी ने एमाल कादवा किन आकुन ताने जमू बाथरूम ने एमालत एमे माँ बुआ सिखावत का चार जी अम्मू गाड़ू अंदर के आउ अम्मुनु टिके छिछड़ार के आउ ताने भगवान बन धर्म बेला बन झुआर काम के बाजले तो हुआ किन भी ताने जाहली भी प्रजावण सांतरा लिया तुलसी गया मोची अलकात आउ ताने सांतरा लिया सांतरा लिया तो जितकी हानि गरम माने लिया ही तापमात्रा वाले खुद को माँ माना लिया आ द्वितीय जिनिस चले बड़ा मानु आ पीपल मानु मन पूजा काम वाले राखुन भी नाम पूजा काम किंतु किछीटा ताने जेन आमे आधुनिक युग तक हद गुठियार टिके बालनानार ता ई युगवन ईया के खातर ताकि बड़ा मानु एमे आ पीपल मानु नामे कुणा गुठात पूर्व युगस्थिन प्रकृति पूजक आ प्रकृति के लगान तमें लड़ाई भी कमानार बहुत तलर तमें जीवन भी केरकिची जंगल जमी बचावा के लगान बहुत चेष्टा काम के था आ नामे आला रही ई जंगल जमी संरक्षित के काम आगे लगान जिते नामे बड़का बड़का फैक्ट्री आलार बारचार तमें ताने हीराकुट जिते डैम मान जा बहुत 48 कि 248 पद्दा ताने भगावाच कानर आर एक कतार रायगिर आचार एमहे के सुरक्षा के आगे लगान एमहे आउट के ताने बफुबार आमे हादुरेन कि एमे ई जेन पुना पीढ़ी बन बुझावा अंगम जे ई जंगल जमी सुरक्षा काम थे ही रद क्योंकि ई जेन नामे आदिवासी गुठारी बेसी ताने अधिकांश 60-80% जंगल जमी सुरक्षा कामनानु बेसी ताने एमे
1: योगदान आतली सेसे ई जेन नामे भाई भूणी गुठार मेना नार मक्का पुपु झका झका ई परिवेश संपर्कित नामे जेन परिवेश गाने प्रकृति गाने नामे जेन संपर्क आतली कुणारगे ईदगे नेकिरी एंदेर तेंगोरी भाई भूणी गुठारी
0: ई 5 जून परिवेश दिवस आती इधर उनटा ताने नाम है सरकार चाहे दुनिया पूरा वर्ल्ड नंटा डे उनटा काम चिकाना ताकि तन मने काम आगे लगन ई ताने ई जुगस्ता कुका दर पढ़ा लिखा जुग ईर दिमाग बेसी ईर ताने साइंस बन बेसी विश्वास कामनार पूर्व युग तन बन लिखा जब तक मारो साइंस माँ बतावर तब तक विश्वास माँ कामनार एस टी ओ आमो उर्खी बाजकुन जाइगिर तम बुझर मल्लाले माँ बुझरना तो अन्य कथा ताने तो ई जुगनु जामारेन ई पर्यावरण विषय थी इसके सुरक्षा मान युद्धभित्तिक सरकार भी आ नाम गुठित भी बुझावा खातर आ तब जी जितकी ताने 6-10 कोटी जितकी मानुमास दरकार होतको ईदा ए खातर तब जाकि ऑक्सीजन होतको विषय थी उर्ख आ चेपू भी ठीक टाइम थी मान पाइया भी मान आ नाम गुठित सुरक्षित स्वास्थ्य भी ठीक रत आ दुनिया भी संसार बनेकिरी चार
1: निश्चित भाव नाम जितिर आहना कथा आड़ेटी जिनिस जे निम जहाँकार जे सचेतन नाम जो सचेतन मानत और कथाबन आह जे ईदा नामे लगान जरूरी दु नामे भविष्य पीढ़ी के लगान परिवेश बोध जरूरी दु हेले जे नाम इ नालकुबोध कामांगत हेले परिवेश रो आ परिवेश राजा हेले परिवेश जदि बाचरा हेले नामे जियादी बाचरो निम जहा तेंकर सुरक्षित अंटा नामे इ समाज बोध अगली अगली धन्यवाद इन्ना बार्षकार आरो ई परिवेश दिए देर बहुत पुआतली आरो एकानिकरी नाम परिवेश नु रत आरो परिवेश बन इयागे लगान नामे इंदिर कर्तव्य आतली आकाथान तेंकर निमान आकाशवाणी तारती अशेष अशेष धन्यवाद जुहार
0: जुहार आज्ञा जुहार आज्ञा
1: हाले आकुन गीत पदी मेनत इ गीत बन पारकानार तहसील टप्पो आउ तमे साथी गुठियार।

0: अनेक समय रे यह प्रमाणित हो सारी जे मानव अधिकार को सुरक्षित रखिबा एचआईवी संक्रमण रोकिबारे सहायक होई किंतु ए विषय रे लोकंक अज्ञानता एड्स मूलोत्पाटन रे बाधा सृष्टि करूछि तेणु ए वर्ष विश्व एड्स दिवस रे थीम रखा जाई छी टेक द राइट्स पाथ जदि समाज रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष करी पछुआ वर्ग महिला एचआईवी संक्रमित बा एचआईवी संक्रमण रो आशंका थिबा जनसाधारण निज मानव अधिकार प्रति सचेतन हेले एड्स भली संक्रमण को आमे संपूर्ण भाबे दूरै देई पारिबा
1: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार
2: कार्यक्रमर शेष गीतटी गोपरे बढ़ुची कला कन्हई कथाचित्रर गाई मोहम्मद अजीज एवं अनुपमा देशपांडे गीतर

हेलो हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार, आपन को स्वागत करुछु आज कार्यक्रम। हेलो अनुरोध आज्ञा आज्ञा आज्ञा कौन आज्ञा आपणकर परिचयटा दौन आज्ञा।

0: ଶେଷ ହେଲା ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त।

0: प्राप्त होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई बंदिता मिश्र। युवपीढ़ी मानक शक्ति दक्षता और प्रतिबद्धता गोटे समृद्ध राष्ट्र गठन्ति निर्णायक भूमिका ग्रहण करवा बोली कहले राष्ट्रपति। 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मिलनी जोग देबा लागि तीन दिनिया भारत गस्तने आसुचन जापान प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। भिबिजी रामजी आईन 2025 आष्ठानु देशव्यापी हेला कार्यकारी। ई नुआ आईन अधीनती सरकार घोषणा कले बढ़ला मजूरी टंका। डिजिटल इंडिया एवं नीतिदिनिया जीवन थी सब क्षेत्र ने उपयोगी होइछे आउ डिजिटल आर्थिक कारबार माध्यम थी हिताधिकारी मानकर पाके सीधा सलक पहुंची पारुछे कहले प्रधानमंत्री। जीएसटी क्षेत्र ने जून मासे 194,822 कोटी राजस्व संग्रह। छात्र छात्री मानकु संशोधित नुआ पढ़ा बही जुगाई दिया जिबा बोली विद्यालय गणशिक्षा विभाग सूचना। डिजिटल इंडिया रो 11 बरस पूर्ति भितरे भारत विश्व सबुठानु बड़ डिजिटल सार्वजनिक भित्तिभूमि इकोसिस्टम भितरे कला मान्यता हासिल। पूरी रथयात्रा थी भक्त मानकर श्रृंखलित और सुरक्षित दर्शन सहित आवश्यक व्यापक व्यवस्था करा जाइछि बोली सूचना देले पूरी जिलापाल। आज के 10 बरस नु अटका हेबा कार्यकारी हेउचे प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना। 24.6 नियुत हेक्टर जमी के जलसेचन व्यवस्था सहित फसल उत्पादन र बढ़ती आर परिवेश र स्थिरता ने हेइचे जबर परिवर्तन। जातीय डाक्तर दिवस अवसर देश डाक्तर समाज के शुभेच्छा जनाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आउ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ परिचालित मैट्रिक सप्लीमेंटरी और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षार्थी 24,470 जन परीक्षार्थी आवेदन करथिबार बेले 251टा केन्द्र ने अनुष्ठित हेबाय परीक्षा। ओडिशा पुलिस तरफ राइज निशामुक्त ओडिशा अभियान हला मूल। निशामुक्त सुरक्षित और सशक्त ओडिशा गठन लागि ओडिशा पुलिस संकल्पबद्ध कहले डीजीपी। आउ रायबा 24 घंटा भितरे संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिला न अति जबर वर्षा हेबा बोली सूचना देला पाणीपाग विभाग। एच निर्मुखिया खबरिन शेष हला जुहार।
1: संबलपुरी मुख्य संवाद सुनिले श्रोता मने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररू।

अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

काया महालक्षी रूपे गो मा भोंडार घरे मुरहेता ठिया मन कले छनके माया माया करी तुई धर सुकाया महालक्षी रूपे गो मा भोंडार घरे मुरहेता ठिया।

0: सुनल दादा
1: हाँ वो बढ़िया लगला जे सुन तो ई गला गला बोले तते गुटे कथाटे कहूचे
0: काना
1: ई वन महोत्सव रो कथा बोले मुई यादे गला बोले आमर गाँव क्लब घर पिला मान संगे भेट पड़ी जिमी आउ तीन चार दिन गला उतारू हे आमर गाँव जेन खुला जगह मैंने गुड़ादू नहीं अच्छी क्या हेन जनता हले भी इधर गज गुड़ादू देख जगामा
0: हाँ आमर है पड़ार भी काम को बार सहले माझी माने ठोल हम गुटे जगह ने जे हेने सांगे जाई करी बाकी जेंटा पैन पुना टिके दे करी बोलो तो गज गुचा जोड़े लगे करी
1: आर आमर गान स्कूलिया छुआ मान को भी मिसामा कागरे छुआ दिनु ताहा को जदी ई विषय ना आमे टिके ने सचेतन करमा बले से माने तो आमर वंशधर ने
0: हां
1: तो समय हे गला
0: ना हेला न गो दादा जी मानो
1: जाऊ
0: जाऊ।

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉସ୍ତାଦ ମୁନାୱର ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିଲେ ଲଘୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜଟତାଲରେ ନିବଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରାଗ ଖମାଜ ଆଧାରିତ ଠୁମ୍ରି। ତବ୍ଲା ସଙ୍ଗତ କରିଥିଲେ ଉସ୍ତାଦ ୱଜିଦ୍ ହୁସେନ, ସାରଙ୍ଗୀବାଦନ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ସଜିରୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ, ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଥିଲେ ଅସଦ ଅଲ୍ଲୀ ଅଶ୍ଫାକ ହୁସେନ ଖାଁ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से हो।

0: होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में

0: निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: थे जमा विश्वास होने जवा मजी उत्फुल्ल मजी उत्फुल्ल मजी उत्तेजित मोर मन हो निशार्थ राति हो पछके मु एबिबि रास्ता रास्ता रे चित्कार करि बुलंती मते मिली गला मते मिली गला मते मिली गला
1: मते भी भारी खुशी लागुची तुम कथा सुनी एमिति किछि घटियो बोली मोर अनेक विश्वास थिला
0: ओहो
1: सेति पई त तुम स मु भी एते वर्ष धरि अपेक्षा करि बसिथिली किंतु ज्ञान तमे तो से अमृत रस को मनीष ऊपर परीक्षा करि ना
0: ना करि नै किंतु तथापि मोर संदेह नै तुम्हें तो विज्ञान छात्री नथिलो तेणु तुम्हें सब कथा बुझिपार नहीं तथापि तुम लैबोरेटरी भितर को चल मु तुमको सबकि बुझे चेष्टा करी यहाँ है लैबोरेटरी या तुम अनेक थर देखी
1: हाँ?
0: घर चारिपटे घेर रही अनेक जंत्रपाति देख से काचर जार रखा जाइछि तार भितरे से रैक भितरे बढ़ुछन्ति चारि जातिर अति क्षुद्र जीवधर
1: जीवधर
0: हाँ सेमानकर जीवन चक्रर बयस होछि मात्र 48 घंटा प्रति 48 घंटा रे गोटाए वंश शेष हुए आ गोटे नुआ वंशर आरंभ हुए मु कोन करछि ने गोटे प्राणरसर आधार दे मु सेमानकु 12 दिन रु 15 दिन जके बंचै रखि पारिछि आ जेहेतु सेमानकर शरीरर जंत्र आ मनीषर देहर जंत्र प्राय समान मोर दृढ़ विश्वास से प्राण रसर आधार दे मनीष को 300 वर्ष पर्यंत बंचि रखि हबो बुझिले हौ चल एथरक आमे आमर रेस्ट रूम भितरक फेर जिबा बस ए अनुसंधान इतिहास मु तुमको संपूर्ण करी कही नहीं कारण मोर विश्वास नथिला ए अद्भुत अलौकिक दिन संभव हम प्राय 10 वर्ष तलर कथा विदेश गवेषणा करथाय मोर दिन हठात मन हुए तो अनेक सत्यर संधान अनेक शक्तिर उद्भावन संभव बा शेष हो पार नहीं मनीषर ए सीमित जीवन सीमा भितर से सीमा को जदि यथेष भाव में बढ़ी दी जाए पारंता ताहले अनेक नूतन सत्य अनेक नूतन चिंतार उद्भावना हो पारंता आता हो पारे से सत्य से चिंतार शक्ति बल मनीषर जीवन को अनेकटा दुखहीन व्याधिहीन और सुंदर कर भारत को फेरी दीर्घ 8 वर्ष काल हाँ जबा दीर्घ 8 वर्ष काल मु मोरे एकांत कोणे रे बसी अनेक श्रम करिछि अनेक कष्ट स्वीकार करिछि अनेक स्वप्न देखिछि मोरे उद्भावन एक जुगांतकारी उद्भावन अनेक जुगांतकारी स्वप्न को संभव करिबो किंतु जबा जहाँ मु आज पाइछि सेथिर तो अनेक किछि एकांत भावे तुमर प्राप्य गला 5 वर्ष धरी एक अनिश्चित जीवन नहीं अनेक निंदा अनेक अपवाद सही तुम मो पाखे ढाईच तुम अकुंठ प्रेम मत तुम ऋण सुझी हबार नुह चपा तुम ऋण सुझा भाई दुस्साहस मोर ना
1: कि सब आज ये बड़ा कहीं ज्ञान एवं तुम अनुसंधान अपूर्ण रही अनेक परीक्षा निरीक्षा बाकी रही मु भी तुम पर स्वप्न देखा आरंभ किंतु ज्ञान से सब कथा परे प्रथमे मनुष्य उपरे तुमर उद्भावनार परीक्षा
0: हाँ प्रथमे मनुष्य उपरे उद्भावनार परीक्षा तथापि आज पई से आगामी कालीर कथा आगामी काली की बाकी रहुछ बा तुम आस मो हाथ हाथ रखी मो पाखरे बस आजीव मन भितर अनेक आनंद अनेक आलोडन अनेक स्वप्नर विचूरण तु मो पाखे बसी से कविता आवृत्तिकर चपा जो गीत शुणी मु प्रथम तुमको भल पाई बसली हाँ
1: ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ନେଇଗଲା କିଏ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ଜୋଛନା, ଆଖିରେ ତାହାର ଭରିଦେଲା କିଏ ଦୁଃଖ ଆତଙ୍କର ଦ୍ୟୋତନା। ଶୁଭ୍ର ମେଘରଙ୍ଗ ବଳାକାର ସ୍ୱନେ କିଆଁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଅମୃତ ପ୍ରସୁ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ କ୍ଷୁଦା ଅନାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସହିଗ ମୋର ପ୍ରିୟାଗ, ଏକା ଏକା ଆଜି ଲାଗେ ଭାରି ଶଙ୍କା, କାହିଁ ଅଛ କିଆଁ ଆସନା, ଏକା ଏକା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନା।

0: मिस्टर महापात्र मोर अभिजोग केवल से ही स्वार्थन्वेषी नीच किंकर मना वैज्ञानिक मानक विरुद्ध रे जो माने से भली अपकर्म करुछंती अन्य मानकु मु नमस्कार करुछि किंतु मु आज से समस्त हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि से मानकर निज तयारी सुख और समृद्धि नियम को अन्य मानक उपरे चापी देबार अपचेष्टा करंतु नहीं। मनीष सृष्टिर आरंभ रु सुख भोगर पंथा जानी सुखलाभ कर किंतु से मानक षड़यंत्र तार आज अनेक दुख अनेक ग्लानी आनेक निरानंद मु अनुरोध करुची आपण माने से हतभाग्य मनीष को आपण को कबल मुक्ति दिंतु ये अमृत रस दे दीर्घायु कर अलस विलास दूर कर दिंतु।
1: मिस्टर सिंह आपण कौन कहते आप निजे
0: मिस्टर महापात्र मुझीना आपण माने स्वार्थनेशी स्वप्नवादी।
1: मिस्टर सिंह
0: धन्यवाद मुझे
1: आपण जातु
0: एवं यही अवसर में आपन टिके स्थिर चित्तरे किछि बुझिबा को चेष्टा करंतु।
1: प्लीज गो मिस्टर सिंह।
0: ज्ञान बाबू आपण ज्ञानहीन नुहंती किंतु निर्बोध आपण कौन करुछंती आपण निजे भी बुझी नाहंती।
1: मिस्टर सिंह
2: कौन है ला ज्ञान तमें एमती पार्टी करी उठिलो कहीं की
1: ना किछि नै
2: जगतजीत सिंह सहित किछि आज राति अनेक है परीक्षा कम ये रो तुम उठ एथर घर को चल
1: ओह आज जाके कहीं परीक्षा पर राजी हेले नहीं जबा बर मोर उद्भावन को अनावश्यक अप्रासंगिक बोली कही समस्त चलीगले
2: क्या न
1: से मन कथा शुणी शुणी मन हो सतर्कणे आविष्कार गोटे स्मृतिहीन मरीचिका पी अर्थ नहीं पड़ा। अच्छा जबा सतर कौन कही स्वेच्छासेवी आमक मिले
2: ज्ञान
1: जबा मुझे जदि शेष पर्यंत कहीं न मिलती ताहले आमे दिए
2: आमे तुहे
1: न था वैसे कथा अनेक राति गलानी तुम्हें जाओ गुरुचरण तुमको नहीं तुम घरे छाड़ दी आसु
2: किंतु तुम्हें मने
1: ना मत कहीं भारी क्लांत लगुच
2: ज्ञान
1: मुझे समय ये चुपचाप बसिया चाहे गुरुचरण
3: सार
1: दे को नहीं घर छाड़ दी आस
3: हौ दे चल
2: हाँ हौ चलो

0: Lion and Birds 2.
1: आपण माने
0: नमस्कार, आमे आज सकाळे आपणको टेलीफोन करथिलु।
1: आई सी, आपण माने ताहले
0: हां आमे आब्राकाडाब्रारु आसछु।
1: आपणको त राति अथरा आसिवार थिला।
0: हां अपोलोजीज,
1: आपणको त राति 8टा रे आसिवार थिला।
0: आ अपोलोजीज सर, आम क्षमा करिवे। हां मु परिचय करि दिए, मु हेउची जेमान आउ ये मो सहकारी मिस्टर एबेल लेस्का, आउ ये हूँ आमर परिचय पत्र।
1: हो आसन भीतर को आसतु, से सोफार बसतु। यस मिस्टर जेमन,
0: इट्स अ प्लेजर सर। आपणों पर जड़े जुगांतकारी आविष्कार साक्षात करार अपूर्व सुजोग पाई आम धन्य। खाली ये देश में नुहे, अन्य देश में भी आपण ख्याति व्यापक आरंभ कला। आ वेरी सिंसियर कंग्रेचुलेशन सर।
1: थैंक यू।
0: नो मेंशन, नो मेंशन। किंतु सर आमर आजिकार आलोचना भारी गोपनीय। ये लैबोरेटरी परिसर भितर आउ कहीं नहांती तो
1: ना? आप निश्चिंत आपण कथा कही पारती।
0: गुड, आम आम सरकार तरफ गोटे भारी गुप्त किंतु गुरुतर प्रस्ताव नहीं आसचु। आप जानते आमे अब्राकाडाब्रार लोके समस्त शांति रहिबाकु चाहूँ, किंतु आमर कौनसी कौनसी शत्रु देश आम देश आक्रमण करिवार योजना करिवार संवाद आमे पाइछु। तेणु आत्मरक्षा पाई युद्ध करिवाकु प्रस्तुत होउछु। आमे देश विदेशरु अनेक अस्त्रशस्त्र आनि ठूल कलुणि, सैन्य संख्या बढ़ी चलीचु, प्रचार्यरे लोकमानंकु युद्धमुखी करुछु। आमर वैज्ञानिक माने अनेक नुआ नुआ मारणास्त्र उद्भावन करिवार लागि पड़िछन्ति।
1: बुझिलि, शांतिर ख्यालरे आत्मरक्षाळरे पृथ्वीर अनेक देश एभली विस्तृत रणसज्जा करिवार लागि पड़िछन्ति, आ हत्या रक्तपात करिवाकु प्रस्तुत मध्य होउछन्ति। मिस्टर जेमन, एथरे नुआ कोन रहिला? आपणकर आसिबार उद्देश्य कोन कहंतु?
0: कहुछि, जेते अस्त्रशस्त्र आनी ठूल कले भी ताकु व्यवहार करिवाकु दरकार एक दुर्धस सैन्य बाहिनी। सेथिपाई आमे आम देशर बछा बछा युवक मानकु नै एक स्वतंत्र सैन्य बाहिनी गढ़िछु। मातृभूमि रक्षा निमन्ते सेमानकु हिंस रक्तमुखी आ उन्मादक हेबाकु तालीम दौछु, किंतु सेमाने तालीम परे खूब बेसी दिन से शक्ति धारण करि रहि पारिबेनि। सेमानकर बार्धक्य आसीजिबो, सेमानकु जरा ग्रास करिजिबो। सेथिपाई आमे भाबिछु आपणकर से अमृत रस दे आमे सेमानकु दीर्घायु करिबु, दीर्घांग करिबु। अंतत 200 वर्ष पर्यंत सेमाने रणकौशल दुर्दश ही रहिबे। एभली एक सैन्य बाहिनी को पराजित करिबा कहारी पक्षरे संभव हेबो नै।
1: ना मिस्टर जेमन, मु मोर आविष्कार को कोनोसी युद्ध विग्रह रे व्यवहार करियाक देबि नै।
0: आमे भी युद्ध चाहू ना सर, आमे केवल आत्मरक्षा करियाक चाहू। आपण आमको आमर आत्मरक्षा पई साहाय्य करंतु सर। आपण आमको आपणकर अमृत रस फॉर्मुलाटा बिक्री कर दियंतु।
1: मिस्टर जेमन,
0: आमे सेत पई 50 लाख टंका देबो प्रस्तुत होछु।
1: व्हाट? ना ना, मो टंका ने मोर फॉर्मूला को बिक्री करी परिबे नहीं।
0: आमे 60 लाख टंका दबु।
1: मिस्टर देमन, ना
0: 70 लाख,
1: ना टंकार परिमाण बढ़े मते युद्ध करियार वृथा चेष्टा करंतु नहीं। मिस्टर जेमन, मु आपन को मोर उद्भावन और बिक्री करिबे नहीं।
0: मु स्वीकार करूची आपन लुप्त हबार परिमाण केते आमे जानु ना। कोंतु सर, केते टंका पाइले आपण आमको आपणकर फॉर्मूला बिक्री कर दे पारिबे?
1: जेमन,
0: हटात मना कर दियंतु नै सर, किंतु ताको आपण रखिबा करिबे कोन? आपण तो से आविष्कार को परीक्षा करियाकु स्वेच्छा से भी पाउ नाहती।
1: मिस्टर जेमन,
0: आमे जानु तेबे आपण कोन आपणकर आविष्कार को अन्न कहारी को बिक्री करियाकु मनस्थिर करछन्ति? से माने कोन आमठारु अधिक टंका देबे? कुहंतु।
1: मु कहारे की बिक्री करियो को चाहे ना।
0: आमे भी ठीक से या चाहूँ। आमे चाहूँ केवल आमे ही हेबू आपणकर फॉर्मूलार अधिकारी, केवल आमे ही गढ़ीबू पृथ्वीर एकमात्र दीर्घायु दीर्घांग अपराजेय सैन्य बाहिनी। सेथिपाई आपणकर फॉर्मूला आमर नितांत एवं एकांत भाव आवश्यक, मूल्य बा पंता जहाँ हेउ ना काहेकि।
1: मिस्टर जेमन, गोटाए कथा को मु बारंबार पुनरावृत्ति करियो को चाहे ना, आपण एथर आसिपारती।
0: मिस्टर महापात्र, ଆମେ ଆବ୍ରା କାଡାବ୍ରାର ଦେଶର ଲୋକେ ସହଜରେ କାହାରି ମନାକୁ ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉନା। ସ୍ୱୀକୃତି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବି କରିପାରୁ।
1: ଓ ଆପଣ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି?
0: ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆପଣ ହୁଏତ ପସନ୍ଦ କରିବେନି।
1: ଯେମନ
0: ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଠିକ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦଲାଲମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଆମର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏ ଭିତରେ ଯେମିତି ପିଲାଳିଆ କିଛି ନ କରନ୍ତି। ଏ ଧରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ସେଭଳି ଏକ ଅପରାଧର ଆଦୌ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍।

0: मिस्टर भिल्ली आपण ए कथा सब
1: केमिति जानलु? ये तो मिस्टर ज्ञान आमे जानु जानिबाटा आमर वृत्ति आब्राकाडाब्रार लोके भी जानिथिले सेथिपाई सेमाने प्रथम थर चाली गले किंतु द्वितीय थर एठु बाहरिला मात्रे से मुह दीटा किभली विभत्स भावे चिंचत्र हो जाइला बिचरा।
0: ताहले कौन आपणक देशर लोक माने
1: मिस्टर ज्ञान मु कहिछि आपण ज्ञानी किंतु फूल निर्बोध सेटा तो एक खेलर नियम।
0: व्हाट डू यू मीन?
1: आमे आज लैबोरेटरी परिसर भितर बाहरी गला परे आब्राकाडाब्रार लोकंक हाथरे धरा पड़ि जाय पारु अन्य शत्रु देशर गुप्तचरंक गुड़ीरे टळी पड़ि पारु से माने आम

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए

0: सीमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर याचिनीर मुख्य खबर संगे मुई तर्पण कुमार प्रधान। विकसित भारत निश्चित रोजगार आउ आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी आईन अष्टानु सारा देश हला लागू। केन्द्र ग्रामीण विकास मंत्रालय सूचना अनुसार BBG रामजी आईन अधीन थी फी आर्थिक बछरे 125 दिन निश्चित काम जुगे देवार रही व्यवस्था। जापान प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज दिनकिया भारत गस्ते आसुचन। आवा काल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साक्षात करवार सहित 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देवे जोग। मुख्यमंत्री अध्यक्षता अनुष्ठित होला राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक। बैठक थी 12 प्रस्ताव के मिलला अनुमोदन। मुख्य शासन सचिवों अध्यक्षता थी भुवनेश्वर नहला सचिव स्तरीय बैठक। झारसुगुड़ा जिलार 25 प्रमुख प्रकल्प कार्यकारिता लगे तैयार है रोडमैप। मौसुमी वर्षा लागि जलबदी आशंका थिबानु सबु सहरांचल स्थानीय संस्था के सतर्क रहबारके निर्देश दिले राज्य सरकार। चिठा भोटर तालिका प्रकाशन नेकरि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अध्यक्षता थी अनुष्ठित होला सर्वदलीय बैठक। आयबा जुलाई 5 तारिख दिन प्रकाश पाइबा चिठा भोटर तालिका। अणसर पिंडनु जरे पड़ितबार महापुर मानकर चलीछे गुप्त सेवा नीति। ओडिशा विधानसभा आज बाचस्पति सुरमा पाढ़ी 2 बछर नेतृत्व पर आधारित 2 कॉफी टेबल बही उन्मोचन होबार सहित गोटे नुआ फिजिओथेरापी सेंटर के उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भूल थिबार पढ़ा बही मानक हटेकर सरकार निर्भुल बही जोगेदेवे सूचना दे विद्यालय गणशिक्षा सचिव एन थिरुमाला। डाक्तर मानकर समाज नु लोकर लगी सेवा और त्याग के सम्मान जनक आज पालन होला जातीय डाक्तर दिवस। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ परिचालित मेट्रिक सप्लीमेंटरी और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा आवा कालठानु हेबा मूल। इंग्लैंड गस्ती जाइथिबार भारतीय पुरुष क्रिकेट दल 5 T20 और 3 वनडे मैचर सीरीज थी यहाँ चली। पहला T20 मैच टॉस जीतिकी पहला बैटिंग निष्पत्ति नेला भारत। यहाँ भारत 12 ओवर 3 विकेट हरिकरी कर 111 रन। आज मुख्य खबर एनु शेष होगा जुहार।
1: आकाशवाणी संबलपुर चलित अधिवेशन शेष करने पूर्व शुणु आगामी प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना आगामी सक